0: Rejuvenating media day by day. This is Salaam Media. Connect and stay ahead with Salaam Media. This is Salaam Media, coming to you live from South Africa.
1: This is Salaam Media live from Johannesburg, South Africa. Jiya, this is Maryam Hashmi with show named Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Jiya, aaj hum baat kar rahe hain different mauzu pe, different topics hain hamare paas aur bahut achhi guftugu hamare sath jari hai. Hamare sath do guest maujood the. Ab hamare sath hamare aise guest maujood hain jinka taluk direct media se hai. Aur jaise humne break pe jaane se pehle baat ki thi ki media ka kaam sirf khabar pahunchana nahi hai balki sach ko samne lana hai aur logon ko khabar rakhna hai, lekin aapki ek zara si galat reporting, ek zara si galat khabar se kai logon ki zindagiyan kharab bhi ho jati hain, kai logon ki zindagiyan mutasir ho jati hain, jabki kai aapki ek achhi reporting se, ek achhe image se jo hai wo kya hota hai ki bahut sari logon ki zindagiyan jo hai wo behtar ho jati hain. To ye cheez ka bada khas khayal rakhna zaruri hai ki agar aap ek responsible position par hain, aap ek achhi jagah par hain, to aapki zimmedariyan kitni zyada badh jati hain, aapki jo hai khabar ko pahunchana, dusron ko aagah rakhna बहुत अच्छी बात है कि आप अप टू डेट रहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन उसको करेक्ट रखना कितना जरूरी है. और समटाइम जब उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मीडिया पर्सन पे एक प्रेशर जो है वो भी बिल्ड अप होता जाता है वक्त के साथ, तो फेयर रिपोर्टिंग करना वहां पर कितनी जरूरी है, ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये तमाम चीजें हैं जिसकी बड़ी अहम जरूरत है हमें जानना. और हमारे साथ मौजूद हैं, हमें लंदन से ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब लंदन के ज़ैनुल आबिदीन, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज. Assalamu alaikum, Zain.
2: Wa alaikum assalam. Thank you so much, Maryam. It's really nice seeing you once again. And
1: कितनी जरूरी है, तमाम फैक्टर्स हैं, ये तमाम चीजें हैं जिसकी बड़ी अहम जरूरत है हमें जानना. और हमारे साथ मौजूद हैं, हमें लंदन से ज्वाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब लंदन के ज़ैनुल आबिदीन, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं. अस्सलाम वालेकुम ज़ैन.
2: वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच मरियम. It's really nice seeing you once again. And एक फासले से देखने को मिल रहा है, हम एक स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है.
1: जज़ाकअल्लाह. जी, ज़ैन के बारे में बताना चाहूँ, ज़ैन मेरी कलीग है और बड़ी

0: चाहूंगी, सबसे पहले तो आपको सॉरी मुबारकबाद देना चाहूंगी, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन, एंड ऑल्सो ये पूछना चाहूंगी कि प्रेशर कितना बढ़ गया?
1: दो डिफरेंट चीजें हैं, एक सहाफत और एक सहाफत के अंदर सियासत. तो जब हम सहाफत की बात करते हैं, एज वी ऑल नो दैट इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट, यानी तीन पिलर्स जो हैं, आप जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो कामयाब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि तीन जो पिलर्स हैं, यानी जो उनकी जुडिशरी है, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो उनकी एग्जेक्टिव है, यानी लेजिस्लेटिव एक कानून बनाती है, एग्जेक्टिव जो है वो उस पर अमल करवाती है, और जुडिशरी जो है वो जो अमल नहीं करता उसको जजा और सजा देती है. सो जो चौथा सबसे बड़ा सुतून है वो मीडिया बनता है. सो जब आप मीडिया में ऑलरेडी हैं, यानी एक सुतून को संभाले हुए हैं, उससे पैरेलल आपने फिर एक सियासत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ता है, बहुत सारी दोस्तियां हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उनको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है. यानी अब आपने, जब आप सहाफी हैं, जब आप सिर्फ पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिक्स है, तो वो कदरे आपके लिए आसान हो जाता है, आपकी एक ग्राउंड है उसमें आपने खेलना है. लेकिन वंस यू आर अ जर्नलिस्ट प्लस अ पॉलिटिशियन इन जर्नलिज्म, सो दैट इज द डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर. तो उसमें आपको फिर दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. एक तो ये है कि अपने कोलीग्स के साथ जो है वो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है आपको, एक एक चीज, और जाहिर है आपने मुसलसल स्क्रीन जो है वो फेस करनी है, मुसलसल स्क्रीन पे रहना है, तो आपका एक एक लफ्ज जो है वो काउंट हो रहा होगा, वो सुना जा रहा होगा, और उसको बहुत लिहाज ध्यान से जो है उससे बोलना, तो ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस है. सो द गुड थिंग इज के आई बीन प्रेजिडेंट इन माय यूनिवर्सिटी एज वेल, सो मुझे 4 साल का वहां का जो एक्सपीरियंस है वो काम आ रहा है. तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन जो अमल है इस सारे प्रोसेस में जो मैंने सीखा वो ये है कि खामोशी, यानी जितना आप खामोश रहें, जितना कम बोलें, वो आपको फायदा देता है.
0: सही. अच्छा जैन, ये भी है कि आप माशाल्लाह दो डिफरेंट कंट्रीज में आपने मूव किया है और उनका एक्सपीरियंस भी आपका बहुत डिफरेंट होगा, तो आप जरा इस पे रोशनी डालेंगे कि वहां प्रेशर, अपने कंट्री में प्रेशर होता है या इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और फॉरेन कंट्री में किसी पोजीशन पे खड़े होना कितनी बड़ी जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है, कितना बड़ा प्रेशर जो है वो हो जाता है?
1: देखिए मरियम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उसमें दो तीन चीजें मैं आपको सबसे मेन चीज बताता हूँ. सबसे पहले ये है कि जब आप पाकिस्तान में हैं तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं चीजों में, ठीक है, और डायरेक्टली आप जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करें, तो आपको ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है. और पाकिस्तान में रिलेटिवली लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसमें फिर ये है कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त भी उस कदर नहीं है. यानी आप किसी सियासतदान को अगर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा. आप किसी जो एग्जीक्यूटिव का बंदा है, जो कोई एसी डीसी है, उस पर उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे, वो आपको हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े. इसी तरह से जुडिशरी में आप ये जो है वो तोहीन अदालत लग सकती है. ये जो चीज है, जब आप डायरेक्टली एक मुल्क के अंदर एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होता है. जब आप किसी दूसरे मुल्क में, अब जैसे आपने तारू में बताया, तो मैं बेसिकली पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हूँ. तो पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन, इट मीन्स के हमने दो फील्ड्स को देखना है. एक तो ये कि हम लंदन की खबरों को ऑब्वियसली लेंगे, हम यूके के मामलात, यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मुश्किलात हैं इमिग्रेंट्स की, खासतौर पर पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे. इसके अलावा हम जो यहाँ पे वैसे ओवरऑल यूके के मसाइल हैं, उन पर भी जो है वो बात करते हैं. तो मामला ये है कि यहाँ पर थोड़ा सेफ आप इसलिए हो जाते हैं कि ये शायद पाकिस्तानियों के मामलात में उतना जो है वो इंडल्ज नहीं करते खुद को, और ये इतना फिक्रमंद नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में आपके लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि आप जब भी यहाँ बैठे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कदरे ज्यादा दलेर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और वो जो हैं वो पाकिस्तान में हर किस्म की बात, पाकिस्तान के हर मामले पर खुलम खुला बात करें.
0: खुलम खुला. अच्छा,
1: ये चीज़ें पाकिस्तान में
0: एहतियात कर दी चाहिए, एहतियात कर दी. अच्छा, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, जब भी हम ओपन करते हैं एज अ नॉर्मल व्यूअर आप देखते हैं, तो उसमें हर शख्स जो है वो अपनी राय को एज अ न्यूज प्रेजेंट कर रहा है. तो आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इस पे कंट्रोल होना चाहिए, कि आपकी न्यूज वेरीफाइड होनी चाहिए, थ्रू वेरीफाइड चैनल आनी चाहिए, कि हर शख्स जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है और उसकी व्यूज की खातिर न्यूज जो है वो बनती जा रही है, तो वहां पर फिर जर्नलिस्ट का क्या किरदार है, या आपकी जैसे प्रेस क्लब लंदन है उसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है?
1: they

0: हैं कि हम एक दूसरे की मदद के लिए बहुत ज्यादा हमें जो है दौलत चाहिए, वसाइल चाहिए, या कुछ इस तरह की हमें फाइनेंशियल जरूरियात जो है वो होनी चाहिए किसी की हेल्प करने के लिए. लेकिन हकीकत यह है कि एक छोटी सी कोशिश, एक नर्म लव्स, एक बरवक्त ताउन और एक नेक कदम भी किसी की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है. तो ये हमारी जो कोशिश है ना, ये हमें एज ए इंडिविजुअल करते रहना चाहिए ताकि हम दूसरों की जो मदद है वो हम कर सकें और जिंदगी जो है वो आसान लोगों की बना सकें. आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है और इसके लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त जो है वो गेस्ट मौजूद है. उस गेस्ट के तारुफ में मैं जो हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ऐसे नेक काम दुनिया के लिए कर रही हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों के लिए कर रही हैं. बहुत बाहिम्मत हैं और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत फ्रेंडली है, दोस्त खातून है जो कि बहुत जरूरतमंदों की मदद के लिए हर टाइम जो है वो कोशिशें रहती हैं कि किसी को किसी चीज की किसी हेल्प की जरूरत हो. न सिर्फ वो कम्युनिटी को कंबाइन करती हैं, कम्युनिटी को जोड़ती हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि दूसरे लोगों में भी एक मैसेज जो है वो उनकी तरफ से जाए और इस मैसेज को वो दुनिया में फैलाना चाहती हैं. तो ये एक छोटा सा, जैसे हमने कल बात की थी, एक छोटा सा दिया है जो आप जलाते चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि आप उस दिए में, दिए की जो रोशनी है वो आप बिखेरते चले जाते हैं. तो हमारी मौजूद मेहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है राह खिदमत और इसका आगाज किया, क्या सोच उनको आई और किस तरह, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे. जाहिर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, कभी फाइनेंशियली आती हैं, कभी आपको पर्सनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इन तमाम चैलेंजेस से निकल कर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना सकते हैं, आप दूसरों के लिए मदद का जरिया बन सकते हैं. तो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्रा भट्टी. और सिद्रा भट्टी से मैं बात करना चाहूंगी कि सिद्रा भट्टी को हम वेलकम करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कैसी हैं सिद्रा आप? बिल्कुल ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह. बल्कि मैं कहना चाहूंगी देखती आंखों सुनते कानों को सिद्रा भट्टी का सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: करती हूँ कि आप ठीक होंगे. रब कायनात से दुआ है कि आप सबको अपने जमान में रखे, खुश व खुर्रम आबाद रखे.
0: बहुत शुक्रिया माशाल्लाह. ये आपकी जो है क्या कहते हैं, दिल को छू लेने वाली जो आवाज है, जो आपका अंदाज है, वो ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है खुशी का बाइस है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम सुनते हैं आपकी आवाज. तो बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया. सिद्रा मैं बात करी थी कि देखिये बड़ा ईजी है, बहुत सारे लोग हैं जो नरम दिल रखते हैं, नरम जज्बा रखते हैं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन कभी वसाइल, कभी आपको सपोर्ट और कभी कोई ऐसी मुश्किलात जो है वो आ जाती हैं जिससे वो मदद नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं. आप उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आप उन लोगों के लिए मोटिवेशन है कि किस तरह अगर आप किसी की मदद करने की ठान लें तो आपके लिए अल्लाह सुबहान व तआला बहुत ज्यादा आसानियां जो है वो फरमा देते हैं. मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, राह खिदमत ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसका मकसद क्या है, आपने इसको कैसे शुरू किया? आप ओवर टू यू सिद्रा.
1: सबसे पहले मरियम, यू आर सच अ ब्रिलियंट होस्ट और जो हमारा सलाम मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे एंड इट्स अ ब्रिलियंट शो. मैंने आपका कल भी एपिसोड देखा, यू आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब माशाल्लाह माशाल्लाह. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड गिव यू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ.
0: एंड
1: नाउ आई विल स्टार्ट विद, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा, आई एम नॉट वेल टुडे, बट स्टिल मैंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में जरूर शिरकत करूं और जो हमारा राय खिदमत का जो मैसेज है वो सारी दुनिया तक जाना चाहिए.
0: बेहतरीन जी, फरमाइए.
1: मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज है वो शेर से करूंगी. अपने लिए तो जीते हैं सभी, अपने लिए तो जीते हैं सभी, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना. क्या? बस यही हमारी राय खिदमत का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम विद एनीवन. यही सोच मेरे भी हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है. तो मैं कहती हूँ कि वट एवर नॉलेज आई हैव और जो भी हम अपना टाइम एनर्जी जो दूसरों के लिए कर सके, ये हमारे लिए आखिरत में यही काम आएगा. दुनिया में तो आपको पता है ये लाइफ कभी भी एंड हो सकती है, लेकिन हमारा अच्छा काम ये सारी जिंदगी याद रखा जाएगा
0: इंशाल्लाह.
1: नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन कि राय खिदमत क्या है, कैसे ये काम कर रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ राय खिदमत ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मरियम मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे

0: जो टीम मिली है वो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना सिर्फ हम यूके में काम कर रहे हैं, मेरे साथ ईस्ट लंदन के साथ मेरी बहुत अच्छी लीडर्स हैं, उमे कुलसुम ईस्ट लंदन को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह हमारे काफी जो लीडर्स ईस्ट लंदन के हैं। फिर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो हर शहर में ऑलमोस्ट हमारे लीडर्स मौजूद हैं। तो हम हर लिहाज से, अगर पहले मैं यूके से स्टार्ट करती हूँ कि हम यूके में क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं,
1: जी
0: तो हमारे व्हाट्सएप के काफी ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, और जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें हजारों लेडीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम। जो यहाँ पे परदेश में जो मसला है ना, वो लिसनिंग का है, लोगों की बात सुनने वाला ही नहीं कोई होता। तो
1: बिल्कुल
0: हमने उनको ये कहा कि हम आपको सहारा बनेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जाए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस की बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, शाउट आउट दे रहे हैं बिजनेसेस को, कि लेडीज को हम एम्पावर करें कि यू कैन डू एनीथिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। बस यही छोटा सा मैसेज मैं अपनी टीम को देती हूँ। आगे मेरी टीम जो है वो माशाल्लाह हमारे पास क्वालिफाइड है सारे, और वो सारे लोगों को कहते हैं कि शाउट आउट फ्री देते हैं कि यस यू कैन डू इट, स्टार्ट करो अपने आप को, हिम्मत करो, और ये डिप्रेशन और ये जो लोनलीनेस है इस कंट्री में, इससे निकलो और अपने आप को जो है हिम्मत पकड़ो, एंड यस यू कैन डू इट। और अगर पाकिस्तान की मरियम बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको पता है, आप खुद भी पाकिस्तान से हैं, कि कितने नीडी लोग हैं वहां पे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह करीम, वी आर रनिंग सेवरल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। वहां पे वाटर हैंड पंप की बात की जाए, क्योंकि पानी का मसला आपको पता है, साफ फिल्टर वाला पानी बहुत इश्यू है। फिर उसके बाद अगर हम बात की जाए बच्चों का स्कूलिंग का, तो मुल्तान में हमारा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां का लीडर हमारे माशाल्लाह मुल्तान के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोट अद्दू में मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद की बात की जाए तो मुफ्ती कारी अब्दुल जब्बार साहब, तो वो हमारे लीडर फैसलाबाद से रन कर रहे हैं। तो फैसलाबाद में मदरसा दीनी तालीम, तो मैं यहाँ पे किंजा का नाम लेना चाहूंगी। हमारी जो टीम लीडर पाकिस्तान है, उनको हमने ये टाइटल दिया हुआ है किंजा शहजादी साहिबा को, बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड। मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ यूके में, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मेरे पास अच्छी टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किंजा पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लीड कर रही हैं, यंग टैलेंट को ऊपर लेके आना। अभी हमारा नात का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नात करो, अपने टैलेंट को आगे लेके आओ। थैंक यू, ओवर टू यू मरियम।
1: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सिद्रा, यही चीजें जो है ना, ये मोटिवेशन देती हैं। आपको पता है कि एक शख्स जो है वो लीड करता है और फिर टीम जो है वो उसके पीछे उसको फॉलो करती है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत सालों से है वैसे, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी, क्योंकि जब आप अपने कंट्री में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को आप जाहिरा जानते हैं और समझते हैं, लेकिन आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री में, लाइक आपने यूके में स्टार्ट की है, तो उसके लिए कितनी मुश्किल आपको आई होंगी, कितना आपके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ा होगा, और वहां पे आपने अपनी जो टीम खुद ढूंढी है, बनाई है, आपके साथ लोग कनेक्ट हुए हैं, ये तमाम, ये इजी टास्क तो नहीं है, क्योंकि हर कोई तो मदद तो करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो स्टार्ट कहां से करे।
0: वेरी नाइस क्वेश्चन मरियम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यूके के रूल्स रेगुलेशंस लॉज को फॉलो करना। और मैं यहाँ पे जो हमेशा मेरे जो इंटरव्यूज होते हैं, मैं अपने हस्बैंड का माशाल्लाह नाम जरूर लेती हूँ, मोहम्मद फैसल उस्मानी। तो कहते हैं कि जब भी किसी खातून को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं, और बच्चों के साथ छोटे बच्चे हैं, और उनके साथ मैं सारी चीजें मैनेज करना, कम्युनिटी वर्क करना, होस्टिंग, नात पानी, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, सारा जो है ये मेरे वालदैन की दुआएं और मेरे हस्बैंड की मोटिवेशन, मेरे बहुत ज्यादा वो मुझे सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी वो ऑफिस जा रहे थे, लेकिन उससे पहले सारा सेटअप किया मेरे लिए, हालांकि लेट हो रहे थे, कहते नहीं मैं तुम्हें सेटअप करके दूंगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और
1: बिल्कुल
0: वाकई में एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना, ये इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन अगेन मैं वही वर्ड यूज करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे सपोर्टिंग लोग मिले हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क माशाल्लाह.
1: सही. अच्छा, ये जो खवातीन है, खवातीन के बारे में कहा जाता है कि खवातीन जो है किसी भी फील्ड में जो है उनको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लोग चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंस हो या पब्लिक प्लेसेस पे भी उनको जाना हो, उसमें जनाब आप बता सकती हैं कि खवातीन का क्या किरदार रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या ये फुली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खवातीन बेस्ड है, जैसे आपने कारी साहब का भी नाम लिया, या फिर जो है इसमें खवातीन को वो मुकाम दिया जाता है या जिस जो वो डिजर्व कर.
0: जज़ाकअल्लाह मरियम. यूके में तो ऑलमोस्ट सारी टीम ही लेडीज की है, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो लेडीज के होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो पाकिस्तान में, आपको तो सारा पता है वहाँ चैलेंजिंग सोसाइटी है. अभी सैलाब आया और कितने ज्यादा अफेक्टेड एरियाज थे, तो वहां पे लेडीज की सिक्योरिटी, मैं अपनी टीम को हमेशा कहती हूँ यू आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी. कभी भी मैं, मरियम अरसलान कराची की टीम लीडर है माशाल्लाह, तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि कभी भी अकेले डिसीजन ना लो, हमेशा आप अपने हस्बैंड को, पूरी टीम को, तो फिर हमें बॉयज को वहां सपोर्ट लेना मस्ट हो गया था हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. ये चैलेंजिंग है, आपको पता है पाकिस्तान की जो सोसाइटी में लेडीज, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, पर स्टिल जो मेरी, जो ये मेरी टीम मेट्स नहीं है, ये मेरी बहनों से बढ़कर है, तो मैं इनको यही कहती हूँ कि हमेशा, इसीलिए हमने वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर जो है वो मेंस हैं, और किंजा शहजादी जो है वो एज आई सेड अर्लियर माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही है.
1: अच्छा सिद्रा, समटाइम ये होता है कि जब भी हम मदद करने का सोचते हैं हमारे माइंड में ये आता है कि माली वसाइल जरूर होने चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना किसी को जरूरी है. आप क्या समझती हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो उसके लिए वो कहाँ से स्टार्ट करे, क्या वो एजुकेशन पे, या आप कह लें कि किसी की अच्छी तालीम, जैसे तालीम तो है ही लेकिन वक्त दे दे, तवज्जो दे दे, कोई मशवरा दे दे, क्या ये कोई हेल्प हो सकती है किसी से इन चीजों से?
0: बिल्कुल मरियम, जो हम अपना टाइम दें, एनर्जी दें, जरूरी नहीं है. मैं यही कहती हूँ कि काफी लेडीज ऐसी हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप लोग बस हमारे साथ आ जाओ, हमारा साथ दो, घरों से निकलो. और क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि लेडीज के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो यहाँ पे आके बस वो समझती हैं हम अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें, बच्चों को फुल टाइम दें, तो लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं, आपको अपने लिए भी जीना है. जब मेरे ज्यादातर इवेंट जो होते हैं वो सुबह में होते हैं, और ये जो लेडीज हैं यहाँ पे भी हालात टफ होते जा रहे, सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है, लेकिन मैं लेडीज को कहती हूँ कि बिल्कुल आपकी वाली बात की ये सदका जारिया है, अपना कीमती वक्त निकाल के दूसरों को देना, और आप इस तरह भी आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरों को सपोर्ट दे कर रहे हो. और मरियम, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूंगी कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये कोशिश की है कि हम सिर्फ माली मदद से नहीं उनकी, सिर्फ उनको पैसे एवरी मंथ भेजते जाए नो, हमने उस तरह तो वो बिल्कुल वो हो जाएंगे ना कि बस पैसे आ रहे, नो, हमने उनको ना रोजगार स्कीम लगा के दिया अल्हम्दुलिल्लाह. ये हमारी बहुत सक्सेसफुल स्कीम है, और डिफरेंट शहरों में हमने इनको टी स्टॉल्स, और इनको प्रॉपर गवर्नमेंट से हमने इजाजत लेके लगाई है,
1: सही, मतलब
0: ताकि ये ना हो कि गवर्नमेंट इनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह के, या इलीगल एरिया है, तो हमने गवर्नमेंट से, हमारे माशाल्लाह मलिक ताहिर भाई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, तो पाकपतन शरीफ से, तो और भी दिगर शहरों से, अगर मैं सबका अपनी टीम का नाम तो लेना चाहती हूँ, पर मैं सबको ही अप्रिशिएट करूंगी, यूके और पाकिस्तान टीम को, और मेरी यही दुआ है कि हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते रहें.
1: बेहतरीन सिद्रा, और कितनी प्यारी आपने बात की है कि सिर्फ मदद करना फाइनेंशियली जरूरी नहीं है, आपने उनको एक जगह दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, और उनको एक तरीकाकार दिया कि वो किस तरह अपनी अर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि डोंट गिव देम फिश, गिव दम फिश रॉड, कि आप अपनी जो है मदद खुद के तहत आप काम करें, उन्हें मुस्तहकम करें, उन्हें स्टेबल करें. टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, नाजरीन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. सी यू आफ्टर दैट, स्टे ऑन सलाम मीडिया.
2: शिमर, स्पार्कल, कैप्टिवेट, नथिंग लेस देन अ मास्टरपीस. ड्रॉपलेट्स ऑफ गोल्ड इंस्पायर्स प्रेशियस डिजाइन, प्लैटिनम बर्स्ट्स विद इंट्रिकेट फ्रेशनेस, एंड एवरी प्योर डायमंड बिकम्स मोर देन जस्ट अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड. वोरा गोल्ड जेम ज्वेलर्स, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and free Zakat calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers. manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
3: Mmm, Dad, these Frimax chips are so tasty.
4: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
5: You South African, of course. You anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban, or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange, your passport to gold investment.
6: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
7: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
8: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: जी वेलकम बैक मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी. जी हाँ, बात हो रही है आज दूसरों की मदद कैसे की जाए, किस तरह से उनसे उनको जो है स्टेबल किया जाए, मुस्तहकम किया जाए, और किस तरह से पाकिस्तान का नाम, अपने मुल्क का नाम अब दुनिया में क्यों किसी भी कोने में बैठकर आप रोशन कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद है सिद्रा भट्टी. सिद्रा भट्टी से हम बात करें हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन राह खिदमत के बारे में. अच्छा सिद्रा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन ये है कि अक्सर आप जब किसी की मदद करते हैं तो क्या होता है कि उस मदद लेने वाले की इज्जत नफ्स भी मजरूह होती है, ये कुछ इस तरह. कोई ऐसी टिप बताएं जैसे जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर वे से वो उनकी मदद भी कर सकें और जिसकी कर रहे हैं उसको ये फील भी ना हो कि उसके उसको जो है ना लो फील कराया जा रहा है. जरा इस पे रोशनी डालें.
0: मरियम, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आस्क किया जाता है, और वैसे तो इस्लाम में ये है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि तुमने किसी की मदद की है. तो अगर हम उसकी इज्जत नफ्स को उसका ख्याल रखेंगे सफेद पोश का, तो इट्स सो गुड इन इस्लाम. बट हम जो है, अब मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताती हूँ कि हम कैसे काम करें. हमारे पास जो सारी एप्लीकेशंस आती हैं, हमारे पास केस आते हैं, हमारे लीडर्स उनको वेरीफाइड करते हैं. और यस, वी डू आस्क देम कि हम आपको, क्योंकि आपको पता है एक एक पैनी हमारे पास अमानत होती है. हम उनसे जरूर कहते हैं कि आप हमें वीडियो बना के दें, लेकिन ताकि हम बताएं कि आपकी अमानत हकदार तक पहुंची है. लेकिन अब हम उनकी प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखते हैं कि हम उनकी जो जो हमें, फॉर एग्जांपल, हम उनसे परमिशन लेते हैं पहली चीज, और ज्यादातर ये होता है कि हम उनका फेस ही नहीं दिखाते. हम उनके सिर्फ हैंड्स को दिखा रहे होते हैं कि हमारे एक, या उनकी आवाज सिर्फ रिकॉर्ड कर देते हैं. तो जैसे हमने राशन पैक्स दिए जी. तो ख्वातीन की सिर्फ आवाज यूज हुई थी, तो ये इसलिए था कि ताकि हम मोटिवेट करें अदर्स को कि आप लोग भी एक अच्छा काम हो रहा है उसमें हमारा साथ दें. लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर वीडियोस कहीं पे भी आए. तो हमने उनकी प्राइवेसी को मलूज़े खातिर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, और बस हम एज ए एविडेंस स्लिप कि आपको मनी रिसीव हो गई है, आप एक मैसेज कर दें. क्योंकि हमें भी अपने आप को लॉस को कवर करना पड़ता है, क्योंकि ये यूके यहाँ पे एक एक एविडेंस सबमिट होता है कि हमने आपने एक आपके पास जो रकम आई थी आपने वो कहाँ यूज की है, तो फिर हमने अपने आप को भी इस तरह कवर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: सही। अच्छा सिद्रा, माशाल्लाह ये भी मैं बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को भी, अपने लिसनर्स को भी, कि माशाल्लाह आप इलेक्शंस भी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। आप डेफिनेटली, ये कोई बात नहीं है हर बंदा की विनिंग ही हो, तो आप खुद की जो पर्सनैलिटी है ना, यही बहुत बात है कि आप में इतना करेज है कि आपने उन इलेक्शंस में जो है आप स्टैंड किया। काउंसलर का इलेक्शन था, आप उसके बारे में जरा रोशनी डालेंगी कि कैसी कैंपेन थी आपकी, आपके लिए लर्निंग लेसन उस कैंपेन से क्या था?
0: मरियम, बिल्कुल, मैं एलम पार्क, हमारा ईस्ट लंदन की तरफ एक एरिया है, वहां की तरफ से अपनी मार्गरेट जो हमारी एमपी है, आई लाइक हर सो मच, शी इज डूइंग ब्रिलियंट वर्क माशाल्लाह, एंड शी इज द वन जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है मैडम मेयर, और उन्होंने मुझे कहा था कि सिद्रा तुम 10 साल से लेबर से हो और तुम जस्ट आओ, इस तरफ आओ, स्टेप लो। तो मुझे जो इस तरफ किया गया था एलम पार्क से नॉमिनेट, और अगर तो मुझे आपको पता है यहाँ पे सारे एरियाज थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसलिए मुझे कहा गया था कि आप ज्यादातर जो और एरियाज हैं वहां पे आके हमारी हेल्प करें, तो लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, लर्निंग है, आप सिस्टम में आए, चीजें देखें, लर्न करें, ग्रो करें, तो दैट्स व्हाई मैंने उनको यस कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा रिस्पांस बहुत ग्रेट आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आई एम सो एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड कि मैं फ्यूचर में अच्छा और खुलकर कंपेन करूंगी ओपनली, and then we can achieve more aims and objectives.
1: जबरदस्त, यही बात है कि आप जिंदगी में हर स्टेज पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीख कर आपको वो एक स्टेज आती है कि आपको वो कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। इसी तरह ये बहुत, मैं बहुत इम्प्रेस थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जब लोग ऐसे नॉमिनेट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो है ना बड़ी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। अच्छा सिद्रा, लास्ट जो है फ्यू मिनट्स जो है हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट के चल रहे हैं आपके साथ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके फ्यूचर प्लान्स राह खिदमत के, और ये भी पूछना चाहूंगी माशाल्लाह आपने इतना काम किया, आप क्या समझती हैं कि एक चीज वो रह गई है जो मैं जरूर करना चाहूंगी और राह खिदमत ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो रोशन करना चाहूंगी, बताइए।
0: मरियम, मैं जो है ना, पहले तो एक शेर जो हमेशा मेरे दिमाग में पीछे चल रहा होता है वो जरूर पढ़ूंगी, तमन्ना है कुछ दीनियों मिली काम कर जाऊं, तमन्ना है कुछ दीनियों मिली काम कर जाऊं, मोहब्बत और अखुवत का पैगाम आम कर जाऊं, तो 100 बातों की एक बात, मोहब्बत बांटेंगे, पॉजिटिविटी बहुत अहम करती है किरदार, पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी को अपने अंदर ना लाने दें और खुशियां बांटें, वही बात अगेन कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, अपनी तरफ से 100% करें, बाकी अल्लाह की जात गफूर रहीम है, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाबियां देगा, कभी मायूस ना हो, थोड़े से चीजें मुश्किलात होती हैं शुरू में, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप स्टेप लें, हिम्मत करें और आप कर जाएंगे, और हमारे फ्यूचर प्लान्स राय खिदमत के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे रात को नींद सुकून से आती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मैं रातों रात बहुत ही ऊपर चली जाऊं, नो, मैं बेबी स्टेप्स लेके ऐसे चाहती हूँ कि मेरा जमीर मुतमईन हो और मेरी टीम सेटिस्फाइड हो और हम सब आराम से काम करें, लोगों की फलाह के लिए काम करें, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हम चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे, कुर्बानी का प्रोजेक्ट, राशन पैक्स, रमजान की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए, और दीनी दुनियावी तालीम की बात की जाए, बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो अल्लाह ताला इज्जतें दे रहा है, दुआ यही है कि आखिरत में भी ये चीजें हमारे काम आ जाए इंशाल्लाह।
1: बेहतरीन सिद्रा, बेहतरीन आपका मैसेज था और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और जरूर इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगी और लोगों के लिए आप राह हिदायत बनती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपकी इस खूबसूरत साथ का, इस खूबसूरत बात का, जजाकल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: Walaikum Asalaam. Thank you so much for having me. Thanks to Islam Media. Take care. Have a very nice day. Fi amanillah.
1: Fi amanillah. Jazakallah. Ji, ye thi hamare saath Sidra Bhatti aur inke saath milkar zarur aapko acha laga hoga kyunki inki jo khidmat hain wo insaniyat ki khidmat jo hai wo ye kar rahi hain aur mere khayal mein ki isse behtareen kaam duniya mein koi nahi hai, duniya kya aakhirat mein koi nahi hai. To Allah subhanahu wa taala se yahi dua hai ki Allah subhanahu wa taala inhe inke maqsad mein kamyab kare aur in jaise bahut sare log jo hain wo inke saath jud jaye aur duniya mein jahan jahan hain wo apni taur par logon ki madad انسانیت کی خدمت کر سکیں جی وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم آئیں گے اپنے دوسرے گیسٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ جو ہے بہت سارے پیرنٹس کو کنیکٹ کرے گا کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا ہینڈلنگ کی کس طرح سوشل میڈیا کو ہینڈل کیا جائے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اور خود آپ کی پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ نیکسٹ گیسٹ موجود ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اسٹے ٹیونڈ آن سلام میڈیا
9: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861 786243 for more information.
10: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil, now we're cooking.
11: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415. Or visit www.albaytlodge.co.za.
12: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's orphan sponsorship program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential health care, and a safe home. Your sponsorship is not just support. It's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphan child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
13: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism. Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: جی مڈ مارننگ ٹاک ود مریم ہاشمی میں ہوں آپ کے ساتھ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلام میڈیا کی اردو ٹرانسمیشن جو ہے اسپیشل ایڈیشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم ہاشمی اور میری کوشش یہی ہے کہ ہم جو ہے ایسی گیسٹ آپ کے پروگرام اپنے پروگرام میں لے کر آئیں کہ جن سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم ان سے نالج جو ہے وہ گین کر سکے ہمارے ساتھ ہماری دوسری گیسٹ بہت پیاری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سولیسیٹر ہیں ماشاءاللہ لا کو بہت اچھے سے جانتی ہیں اور میں کیا کہوں ان کے بارے میں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اور یہی ہے کہ آپ ان سے ملیں گے ان سے بات کریں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کتنی ماشاءاللہ ان میں اسکل ہیں کتنی ماشاءاللہ ان میں جو ہے ان کو نالج ہے اور کتنا زیادہ ان سے بات کر کے آپ کو آسانی ہوتی ہے اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ کے جو ہے مائنڈ میں یا آپ کو کوئی لیگل چیزیں ایڈوائز کرنے والا نہیں ہے تو آئی تھنک वो जो है बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं जहां पर हैं, वो बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से केसेस को हैंडल करते हैं. तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मिसेज रोमाना कौसर. आइए अपने प्रोग्राम को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम रोमाना. कैसी हैं आप? ठीक है रोमाना?
14: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. रोमाना बात हो रही है यूके की. यूके का वेदर आज कैसा है?
14: आज माशाल्लाह बहुत बहुत दिनों के बाद आई थिंक आज बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे.
1: जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा रोमाना, बात आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़े लोगों के दिलों को छू जाने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बात का वो ये है कि अंदाजा नहीं है कि कौन सी चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, कौन सी चीज जो है ना वो आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, या आपके पास पर्सनल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल चीजें. हम समटाइम ख्याल नहीं करते, बहुत सारी चीजें हम अग्री कर देते हैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग. और ये आप जरा इस पे रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज को साइन अप कर रहे हैं या आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको उसकी नॉलेज होना कितना जरूरी है. जरा इस पे रोशनी डालिए, बताइएगा.
14: जी डेफिनेटली ये बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप साइन अप कर रहे हैं, यू नो, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उनका बैकग्राउंड, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें उनका, उनकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हैं या पिक्चर सेंड करें, क्या वो स्ट्रीम्ड है, आदि यू नो आपकी वो इंफॉर्मेशन वो डेटा रखते हैं कि नहीं. फेसबुक पे भी ये टॉपिक रेज हुआ था एंड जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया पे, इस पे भी रेज हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने कहा कि जो जब हम साइन अप करते हैं उसमें बस रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन पढ़ता है, इतने डिटेल्स में कोई भी नहीं जाता. एंड अगर कोई पढ़ भी लेगा उसमें इतनी उनको शायद नॉलेज ना हो कि एग्जैक्टली कोई भी क्लोज क्या कह रहा है, कि वो आपकी इंफॉर्मेशन रिटेन करेंगे जो आप डिटेल्स दे रहे हैं या जो आप फ्यूचर में शेयर करेंगे, क्या वो डेटा रिटेन होगा. आई मीन नॉर्मली आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे, मतलब एवरीथिंग, यू नो, इट्स हार्ड टू कंट्रोल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को एंड कौन से प्लेटफॉर्म कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी यूज कर सकते हैं या रिटेन करते हैं.
1: सही. अच्छा कौन सी चीजें जो है हम पोस्ट कर सकते हैं हमारे लिए सेफ है, जैसे कि पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं, उनसे पहले कंसेंट जरूरी है, इजाजत जरूरी है, या हम जो है उसको एज इट इज पोस्ट कर सकते हैं?
14: आई मीन आजकल बिकॉज यू नो सोशल मीडिया सच अ लार्ज प्लेटफॉर्म एंड ये नहीं कि कोई एक ऐप, इट्स लाइक एवरी यू नो बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स हैं. कुछ लोग यूज करते हैं ऑब्वियसली पॉजिटिव वे अगर हम देखें तो यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, आपको न्यूज अपडेट्स देने के लिए और कोई भी बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो शॉपिंग के लिए सब यूज करते हैं. तो पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो इट्स गुड टू शेयर कि आप चीजें शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लोगों को नॉलेज मिलती है. सो ये मतलब इट्स इन अ गुड वे, बट आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप क्या चीज सोशल मीडिया पर शेयर करना चाह रहे हैं. बिकॉज वंस जब आप शेयर करते हैं इट बिकम्स पब्लिक. अगर आपने उस पर यू नो ऑप्शंस उस पे रखे कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो वहां से तो कोई भी वो चीज यूज कर सकता है, फोटोज या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं उस पे, कोई भी पिकअप करके उसको यूज कर सकता है. लोग शेयर करते हैं, लोग फॉरवर्ड करते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, तो ये सारा यू नो ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल दैट. तो ये यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं सोशल मीडिया को.
1: सही. अच्छा ये जो आपने जैसे बात की है पब्लिक की, कि इसका मतलब होता है फ्री टू यूज, कि आप किसी की पिक्चर या किसी का प्रोफाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जहां पर फिर भी अगर आप इनकी फ्री टू यूज या पब्लिक चीजों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी वो परमिशन लेनी जरूरी है?
14: ऐसा सच नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे.
1: Right.
14: अगर आप देखें अगर किसी की प्रोफाइल फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल अगर पब्लिक है और मैं कोई भी इमेज शेयर करती हूँ तो द फैक्ट आई हैव मेड इट पब्लिक किसी को मैं स्टॉक नहीं कर सकती. यू नो आई वुडंट नो कि किसने स्क्रीनशॉट लिया है, किसने फॉरवर्ड किया, किसको आगे किस कहाँ पे लगाई है, मैं भी अपने प्रोफाइल पे शेयर किया है. सो उसमें कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है.
1: तो आप समझती हैं कि कंट्रोल होना चाहिए?
14: इसका ये है सोशल मीडिया इतना वो इट्स सो फास्ट कि आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते. यू नो अगर मैंने कुछ पब्लिक डाला है देन anyone has the right to take a screenshot and share
1: नोटिफिकेशन आ जाती हैं और मेरा ख्याल है ये भी बम्बार्डमेंट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हमें बार बार नोटिफाई हो रहा है कि ये जब हमने चीज पब्लिक कर दी ये भी बड़ा इजी है इसको अगर उन्होंने किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है आपने किस तरीके से अपनी चीजों को जो है यूज करना है अपनी पिक्चर्स अपनी वीडियोज को जो है उनकी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना अच्छा रोमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी की यानी कि आप समझते हैं कि एक आम इंसान उसके लिए ये कितना समझना जरूरी है कि उसके सोशल मीडिया पर बुनियादी हकूक क्या है बेसिक राइट्स क्या है क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना इतना ही जरूरी है इसके लिए वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए
14: डेफिनेटली होनी चाहिए वर्कशॉप्स स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है जो शायद सोशल मीडिया आजकल यूज करते हैं मे बी अभी तक सीख रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनके राइट्स क्या है उनको चीजें कैसे यूज करनी है समटाइम्स यू नो किसी ने कभी कोई ऐप यूज नहीं किया हो मे बी वो कुछ पोस्ट कर दे यू नो अपनी पर्सनल पिक्चर्स शायद उनको नहीं लाइक इवन बच्चों की भी पोस्ट कर देते उनको नहीं पता होता कि ये लाइव जा रही है या पब्लिक में है एंड कोई भी इसको मिस यूज कर सकता है इसको कॉपी कर सकता है तो उनके लिए वर्कशॉप्स होनी बहुत जरूरी मैं समझती हूँ कि हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए एंड इसके ऊपर आई बिलीव यू नो जहाँ पे मैं रहती हूँ लोकली वी डू प्रोवाइड दैट सर्विसेज वर्कशॉप्स होते हैं इसको सिखाने के लिए भी यूज करने के लिए भी एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन
1: जी रोमाना ये जो फेक अकाउंट्स बनते हैं तो इस पे लीगल एक्शंस क्या लेना चाहिए अगर किसी के फेक अकाउंट्स बन जाए या कोई भी आइडेंटिटी आपकी लीक हो जाए तो उस पे आपके राइट्स क्या हैं आप क्या कर सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा क्या कर सकते हैं
14: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा इसमें बहुत सारे आजकल ऐसे हो रहे हैं क्योंकि एज अ सोलिसिटर हम जैसे डिफेमेशन केस अगर किसी ने कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिसाइज की है कहीं भी किसी भी मीडिया पोस्ट पर डाली है आप उसको स्टॉप कर सकते हैं आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं यू कैन गेट एन इंजंक्शन कि आप उस आइटम को उस पोस्ट को रिमूव करें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि जो एक्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपने उनको रिपोर्ट करना होता है फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फेक आईडी बना के आपकी कोई पिक्चर या इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है तो आप फेसबुक के ऊपर उनकी सेटिंग्स में इन्फॉर्मेशन होती है कि आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पोस्ट तो फर्स्ट स्टेप आपने वो लेना होता है एंड आप फेसबुक को एक्सप्लेन करना होता है कि आप चाह रहे हैं कि वो आइटम या पिक्चर रिमूव हो जाए सो जब वो रिमूव भी हो जाती है अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एंड अगर रिमूव नहीं होती फॉर एग्जांपल आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं आपको कोर्ट के थ्रू आप लीगल एक्शन ले सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंजंक्शन कि वो चीज रिमूव की जाए अब हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो आप मतलब आपको कोर्ट में भी जाके एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपको कैसे ये चीज अफेक्ट कर रही है यू नो आपकी कोई प्राइवेसी या कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिसको आप स्टॉप करना चाह रहे हैं समटाइम्स ऐसी इमेजेस भी होती हैं जिससे लोग अपसेट हो जाएं या यू नो मे बी कोई इंसिडेंट हुआ हो एंड किसी ने कोई जैसे फॉर एग्जांपल एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुआ हो और किसी ने वो पोस्ट कर दी है चीजें शेयर की हैं उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हैं
1: सही अच्छा रोमाना एक और बड़ा अहम क्वेश्चन ये आपने जैसे बात की है कि हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या ये ट्रू है वो चीज वहां से डिलीट हो जाती है कि नहीं होती
14: अनफॉर्चुनेटली नहीं होती आप ऐप पे अगर देखें या कहीं भी किसी ने पोस्ट की हो वहां से वो डिलीट चीज हो जाएगी लेकिन एक्सटर्नली किसी ने कहाँ पे और कहीं पे डाली है अपने ही सोशल मीडिया अपने प्राइवेट प्रोफाइल पे डाली है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते इट्स सच अ लाइक इट्स सच अ ट्रेंड के लोग स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो अगर किसी ने कोई चीज डाली है जिसके अगेंस्ट आप क्लेम करें कि उसको रिमूव किया जाए हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे वो रिमूव हो जाए लेकिन उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो कहीं और उन्होंने शेयर किए होंगे अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेट यू नो प्राइवेट आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं एंड कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे अब जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाती है इट्स एवरीवेयर यू नो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम
1: इवन यू डिलीट इट बट इट्स एवरीवेयर इट इज ट्रू
14: इट्स एवरीवेयर यू कांट कंट्रोल दैट इवन द कोर्ट्स कैन नॉट कंट्रोल दैट कि हर जगह से आप रिमूव करें
1: सही. अच्छा, हम जो पर्सनल डाटा, अपनी लोकेशन, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह, ये जब हम अपनी ज़ाहिर एवरीडे सब लोग शेयर करते हैं, तो हमें ये कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से हमें पता चले कि हमारा डाटा कहां पे कलेक्ट हो रहा है, या अगर कोई पर्सनली कलेक्ट कर रहा है तो हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाए या कुछ ऐसा. क्या ये जब ये एप्स बनाते हैं तो इनमें ये ऐसी चीजें क्यों नहीं डालते, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों इसमें ऐड नहीं होता है? आप क्या समझते हैं इसकी जरूरत है?
14: हर सॉफ्टवेयर में नहीं होता ये कि आप ट्रैक कर सकें कि कौन सी इंफॉर्मेशन इनको ले रही है, लेकिन किसी भी ऐप में अगर आप देखें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं, उनमें ये क्लोज होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इट्स देयर प्रॉपर्टी कि आप उनके ऐप पे डाल रहे हैं, बट दे कांट मिसयूज इट ऑब्वियसली, लेकिन उनके कंट्रोल में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ चीज डालूं देन दे कैन कंट्रोल कि अगर मुझसे वो कहे कि ये दिस इज ऑफेंसिव आपको रिमूव करना है. अब एग्जाम्पल आप लें टिकटॉक पे, अगर कोई भी चीज टिकटॉक पे आप डाल रहे हैं, वेदर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है या नहीं, टिकटॉक आपको स्टॉप कर सकता है ये चीज डालने से अगर वो आप उनके कंडीशंस ब्रीच कर रहे हैं. इन द सेम वे इट मीन्स के टिकटॉक ऐप जो है वो आपकी वीडियोज और जो भी आप डाल रहे हैं वो रखते हैं उनका रिपोर्ट, उनके पास होता है, दे आर रिव्यूइंग व्हाट यू पुट डाउन एंड दे कैन आस्क यू टू रिमूव इट एंड दे कैन डिलीट इट देयरसेल्फ. सो इसमें आई थिंक डिफरेंट एप्स के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, तो कोई भी आप यूज करने से पहले आपको उनके रेगुलेशंस डेफिनेट करने चाहिए.
1: अच्छा, ये जो बच्चे हैं आजकल, बच्चे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी एप्स हैं जिसपे वो बात भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ये क्या ये सेफ है और क्या ये यूज होना चाहिए?
14: आई थिंक विद सोशल मीडिया एंड एप्स अगर आप बच्चों के हिसाब से अगर देखें, देयर इज टू साइड्स टू इट. एक तो एक पॉजिटिव साइड है कि सोशल मीडिया से आप चीजें सीख सकते हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सकती है, आप लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, आप रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन. सो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला हुआ है कि यू नो जैसे अगर किसी ने कोई पोस्ट वर्क या कुछ करना है तो उस पर वो रिसर्च करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. पीपल यूज इट, चिल्ड्रन यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड देखें, social media is being misused by children, you know, and it's affecting them, it's affecting their well-being. Bahut saare incidents humne aise dekhe hain ki bachchon ne misuse kiya hai na unko, like for example grooming ka shikar hote hain, different things, you know. Isme parents should have a control ke unke bacche kya use kar rahe, kis extent tak use kar rahe.
1: Ji, parental responsibility. Ji, parental responsibilities pe inshallah hum is break ke baad baat karenge. Time ho jata hai, ek chote se break ka, milte hain aapse is break ke baad. Stay tuned on Salaam Media.
15: Right now in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child worried and fearful as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
16: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
17: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Safi Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
6: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
18: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: Gee, welcome back with mid-morning talk with Maryam Hashmi on Salam Media from Johannesburg. Gee, haan, hum baat kar rahe hain online data control ki, ki kis tarah aap apne data ko control kar sakte hain, apni information ko aap, apni privacy ko aap safe kar sakte hain. Acha, Romana, और कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया. जाहिर सी बात है कि उनकी फिर बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चाहे एज अ स्कूल आप स्टोर करते हैं तो उसमें वालिदैन का कितना राइट है, कितना हक है कि वो अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकें कि कितने साल तक उनके बच्चों की इंफॉर्मेशन उस स्कूल के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रहेगी.
14: जी डेफिनेटली पेरेंट्स का फुल राइट होता है, स्पेशली एजुकेशन के हिसाब से. पेरेंट्स हैव द राइट के वो स्कूल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन कितनी स्टोर, यू नो कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है बच्चे के बारे में एंड कब तक होगी. बिकॉज ऑनलाइन तो इट कुड बी फॉर एवर, लेकिन पहले जो ये सिस्टम था कि ऑन पेपर आपकी रिपोर्ट से आपकी आपके जो स्कूल वर्क आपने किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर रहती थी, लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन है. इवन होमवर्क भी होता है वो ऑनलाइन एप्स पे होता है, क्लासेस भी ऑनलाइन होती है. सो द पेरेंट्स के पास डेफिनेट राइट्स होते हैं कि आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करें, उनको अप्रोच करें और इन्फॉर्मेशन लें.
1: सही. अच्छा रोमाना, स्कूल्स में आप क्या समझती हैं उनके करिकुलम में उनकी उसमें ऐड होना चाहिए कि बच्चों को अपनी ऑनलाइन सेफ्टी का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इसकी आप कितनी अहम जरूरत महसूस करती हैं?
14: जी इसमें ये जरूर बहुत जरूरी है. आई मीन इसमें काफी लोग जो है लेट ऑन स्कूल के बाद भी इसमें आप इसके ऊपर पूरे कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम के ऊपर भी एक आप एजुकेशन ले सकते हैं. लेकिन आई थिंक इस स्टेज पे स्कूल की एजुकेशन में भी बहुत जरूरी है. स्कूल में सिखाना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करें तो उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है एंड सेफ्टी कैसे रखनी है वो बहुत जरूरी है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एप्स एंड यू नो सोशल मीडिया एप्स, इवन विद गेम्स कम्युनिकेशन एक्सटर्नल लोगों से आप कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो इट्स डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है.
1: सही. आजकल जैसे गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं तो पेरेंट्स डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो आप जरा उनको एडवाइस करेंगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के उस गेमिंग डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी लोकेशंस वगैरह वो डिफरेंट जगहों पर शेयर करें, क्योंकि कुछ एप्स या कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आपसे लोकेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन मांगती हैं, तो क्या उन एप्स को या उन गेम्स को अवॉइड करना चाहिए या अगर कर लें तो फिर उसके लिए क्या सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए?
14: I think it's very difficult nowadays के आप बच्चों को स्टॉप करें, बिकॉज अगर आप किसी भी गेम से या किसी भी ऐप से उनको स्टॉप करेंगे बच्चे दूसरे बच्चों को देख के देर वन चिट एज वेल, सो उनको भी होगा कि हम भी मतलब ये गेम लें या डाउनलोड करें. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली एप्स की जो सेटिंग्स होती हैं आपको उनको यूज करने से पहले उनको स्टडी करना चाहिए कि उनकी आप लोकेशन प्राइवेटाइज कैसे कर सकते हैं. अब हर ऐप में जरूरी नहीं कि आपने डेफिनेटली अपनी लोकेशन देनी है, एंड अगर आप नाम भी दे रहे हैं बच्चे का देन वो भी आप चेंज कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू हैव द एक्चुअल नेम. सो आई थिंक जो सेटिंग्स में होता है वो डेफिनेटली पेरेंट्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, और अगर वो नहीं समझते देन यू कैन गेट आप एडवाइस ले सकते हैं लोगों से, एक्सटर्नल एडवाइस इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि ऐप के ऊपर यू नो एडवाइस करें कि इसको कैसे कंट्रोल करना है. कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ आती या अंडरस्टैंड नहीं होता कि वो एप्स कैसे चलते हैं, बट डेफिनेटली लोकेशन जो है आप यू कैन हाइड इट, आप उसको पब्लिसाइज नहीं करें.
1: राइट right. अच्छा रुमाना, बहुत इम्पोर्टेंट आजकल की इस डिमांड बन चुकी है या जरूरत बन चुकी है, चाहे पेरेंट्स की चाहे बच्चों की, एआई टूल्स. मैं किसी टूल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हम एआई टूल्स की बात करते हैं, बहुत एजुकेट भी करते हैं, लेकिन हमारा डाटा जो है वो वहां पे स्टोर भी हो रहा है. बच्चों की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे डेफिनेटली आप स्टोर करवा रहे हैं या कर रहे हैं. ये कितना जरूरी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है, या इन टूल्स पे आप टोटली रिलाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
14: Yeah, definitely I would not suggest ke aap her tool ke upar rely kare and you can't trust because AI is such a you know large tool ke everyone is using it.
1: Everyone, yes.
14: In a positive way or even like if someone's misusing it, you have to be very careful ke aap apne bachchon ki apni personal information ya photos aap kis tarah usme add kar rahe hain. उसको यूज करने का यही होता है ना कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने पिक्चर्स अपलोड करें, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उनको क्या देना चाह रहे हैं. एंड ये होता है कि लोग फ्यूचर में मिस यूज कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों की पिक्चर्स.
1: बिल्कुल. और ये जो AI है, डेफिनेटली इसमें इसने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है, बहुत ज्यादा तरक्की इसने कर ली है. तो इसका जो है, इसका सही मेरा ख्याल है, नॉलेज होना हर पेरेंट के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन भी और डॉक्टर एडवाइस भी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप AI से ही पूछते हैं और इनसे एडवाइस लेते हैं. लेकिन यह है कि फिर भी जो लोग हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर टीचर्स हैं, जो वो एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है ऑनलाइन हम इस तरह की चीजें हासिल ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल वे से सीखने में और ऑनलाइन सीखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. बहुत शुक्रिया रुमाना. कोई मैसेज देना चाहें आप हमारी ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को, कि किस तरह से जो है वो अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला बता दें कि भाई ये आप कर लें और आइंदा से इस चीज का ख्याल रखें.
14: I mean, एक छोटी सी, मतलब a lot of parents ये स्क्रीन टाइम रख सकते हैं, जैसे लिमिट रख सकते हैं कि बच्चा कित कब तक मतलब स्क्रीन टाइम यूज करे. इट्स नॉट कॉन्स्टेंटली बच्चे फोन पे होते हैं.
1: और इंटरनेट का बहुत बेजा इस्तेमाल है, जैसे यूट्यूब का बहुत, यूट्यूब किड्स है वो भी बच्चे कई नहीं यूज करते कि ये बिल्कुल जो है हमारी एज के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन आप उनके कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उनमें जो है आप नजर रख सकते हैं. लेकिन बच्चे भी आपको, रोमाना एक ये चीज भी बड़ी फील होती है कि बच्चों को ये लगता है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, हमारे पे बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है, तो ये बैलेंस भी किस तरह रख सकते हैं हम, ये भी जरूर अपने मैसेज में.
14: जाना पड़ता है उनको, देनी होती है इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी ऐप पे किसी चीज पे लिमिट, एज लिमिट है, तो उनके फायदे के लिए है. यू नो, सो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन, स्पेशली यंग टीनएजर्स, दे मे नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि इसकी ये बाय लॉ है. यू नो, इट्स नॉट, यू नो, कुछ एप्स जो होते हैं अंडर 13 से आप नहीं यूज करते, लेकिन बच्चे यूज कर रहे होते हैं, लोगों ने डाउनलोड किए होते हैं.
1: बिल्कुल ऐसे.
14: एंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे नीड टू, यू नो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. So my advice would be, just have to be really careful with what you allow your children. Lekin there are measures that parents can take. Screen time protect kar sakte hain, apni content jo wo dekh rahe hain wo age limit mein dekha jaye.
1: सही, मतलब आपका पेरेंटल कंट्रोल जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. बहुत शुक्रिया रुमाना, इतनी खूबसूरत नॉलेज का, इतनी जबरदस्त जो है इन्फॉर्मेशन का, और बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं. अल्लाह सुभान व तआला आपके लिए बहुत आसानी करे और आप हमें ऐसे ही लीगल एडवाइस जो है वो देती रहेंगे. बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.
14: थैंक यू.